0: 89.
1: Trending today.
2: Queen of Pop Madonna has dropped her highly anticipated album titled Confessions 2. The project is a direct sequel to her 2005 hit album Confessions on a Dance Floor. The album is up on all platforms.
1: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
5: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
6: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: टैक्स पे करना अब हुआ आसान, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: City FM 89.
10: We're playing your song.
0: You're listening to
11: Non-stop hits.
12: No talk.
13: No talk.
14: No talk.
15: No talk.
16: No talk.
12: Just you
13: and the music.
14: And the music.
15: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
5: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
4: इसलिए बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना।
5: इन्वेस्ट पार्क?
6: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
5: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
7: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
6: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
8: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
9: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: पूरा हफ्ता राबता बरकरार, जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा, 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में। बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ, आपकी मेरी हम सब की सुपर पावर। शरायतो जवाबित लागू हैं।
11: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
12: We are
13: City FM 89.
14: Hold on! Special delivery coming through!
15: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
16: We're now live on WhatsApp.
17: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
16: It's as easy as 03142-898989.
18: Save our number now and WhatsApp us.
19: City FM 89.
20: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
21: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
22: A new era begins.
23: You're listening to City FM 89.
24: We're playing your song.
25: You're listening to
26: Non-Stop Hits.

0: Belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing the song.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
5: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
6: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
5: बैंक जाने की क्या जरूरत है,
7: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
6: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
8: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
7: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
9: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
10: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
11: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
12: टैक्स पे करना अब हुआ आसान, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैस कैश है ना।
13: City FM 89.
14: You know the city, but do you know what's actually happening in it? From hidden hotspots to the latest trends and go-to events everyone is talking about, and a few that they aren't. I'm Anika, and I'm going behind the scenes to find the heartbeat of your streets. Whether you're looking for your next weekend plan or just want to stay in the loop, I've got you covered. Come and join me on What's Happening in Your City every Friday at 4 p.m. only on City FM 89.
13: City FM 89.
1: You're listening to
15: Nonstop Hits.

0: Groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: Trending today.
4: Queen of Pop Madonna has dropped her highly anticipated album titled Confessions 2. The project is a direct sequel to her 2005 hit album Confessions on a Dance Floor. The album is up on all platforms.
5: City FM 89. We're playing the song.
6: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
7: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
8: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
9: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है, बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT technology food expiry notification के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से complete control. No Frost, no worries.
11: Tax pay करना अब हुआ आसान. अभी JazzCash app download करें और अपना tax pay करके lucky draw में शामिल हो जाएं और जीतें electric scooter. आसान payments और exciting rewards के लिए JazzCash है ना?
12: City FM 89. We're playing your song. Wow.
1: You're listening to
13: Non-Stop Hits.
14: No talk.
15: Just you
14: and the music.
15: Back to back
14: starts now.

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
6: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
7: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
6: बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
7: इन्वेस्ट पार्क?
8: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
7: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
9: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
8: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
11: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
12: टैक्स पे करना अब हुआ आसान, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
9: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: सिटी FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: non-stop hits.
13: You are listening to
14: the hot list, back-to-back music.
15: Stay tuned.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
5: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
6: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: बिगाड़िया चेक, पैशन चेक, द क्लाउड रिसोर्सेज टू स्केल, That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
10: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
11: Attention, the standard commute has been decommissioned.
12: Introducing a system override for your ears.
13: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
14: Join ABD as he takes over the streets.
13: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
12: your evenings just got an upgrade.
14: The rush hour with ABD.
13: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
12: Tune in or get left behind.
15: We're playing your song.
16: When I grow up, I want to be strong.
17: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
16: I want to learn big things.
17: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
16: I want to be the fastest.
17: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
16: I want to grow up like everyone else.
17: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
18: Nurture today, strengthen tomorrow.
17: Act, a Dawn Media Initiative.
19: You're listening to City FM 89.
20: We're playing your song.
1: You're listening to

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 a.m.
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
4: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
5: एवरीबॉडी गो.
6: एक्सपोज योरसेल्फ टू अ वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
7: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
1: Nine. You're listening to
8: Non-Stop Hits.

0: 89.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
2: We are
3: City FM 89.
2: You're listening to
4: Non-Stop Hits.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: City FM 89.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
5: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
6: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: Brand new Honda City चाहिए है। बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: City FM 89.
3: Attention, the standard commute has been decommissioned.
4: Introducing a system override for your ears.
5: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
6: Join ABD as he takes over the streets.
5: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
4: your evenings just got an upgrade.
6: The Rush Hour with ABD.
5: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
4: Tune in or get left behind.
7: City FM 89.
8: You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 4 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Queen of Pop Madonna has dropped her highly anticipated album titled Confessions 2. The project is a direct sequel to her 2005 hit album Confessions on a Dance Floor. The album is up on all platforms.
7: City FM 89.
8: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
1: City FM 89. You're listening to
9: Non-stop hits.
10: No talk.
11: No talk.
12: No talk.
11: No talk.
10: Just you,
11: and the music.
10: Back to back starts now.

0: your song. Only on City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
3: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है. आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है.
2: इसलिए बैंक जाने की क्या जरूरत है? इन्वेस्ट पार्क है ना?
3: इन्वेस्ट पार्क?
4: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें. ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
3: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
5: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ. अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा, 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में. बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ. आपकी, मेरी, हम सबकी सुपर पावर. शरायतो जवाबित लागू हैं.
6: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
7: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाए ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
0: City FM 89.
1: We are playing your song.
8: You're listening to The

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: The perfect antidote to your road rage.
3: Your road rage.
0: City FM 89.
4: It's 5:30.
5: You're listening to City FM 89.
6: This show is brought to you by Jazz.
7: City FM 89, we're playing the song.
8: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
9: Khair to hai. Itni jaldi mein kahan ja rahi ho?
10: Government securities mein invest karna hai. आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
9: बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना।
10: इन्वेस्ट पार्क?
11: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
10: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
12: Mornings evolve, and so do we.
13: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
14: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on The Breakfast Show.
12: The freshest music, the hottest gossip.
13: And the energy Gen Z lives on.
12: It's bold, it's current, it's your morning routine.
13: The Breakfast Show.
12: Only on City FM 89.
5: City FM 89. We're playing your song.
2: You're listening to
15: a

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: You got me going crazy.
6: Trending today.
7: Queen of Pop Madonna has dropped her highly anticipated album titled Confessions 2. The project is a direct sequel to her 2005 hit album Confessions on a Dance Floor. The album is up on all platforms.
1: City
3: FM
1: 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
8: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
9: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
10: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
11: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT technology food expiry notification के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से complete control. No frost, no worries.
12: Brand new Honda City चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
13: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स, रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर, क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।
14: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
11: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: सिटी FM 89.
1: You're listening to

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। With Yellow by Jazz Cash.
6: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500।
7: अगर आप हैं इनड्राइव कार पाए या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
8: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
9: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
10: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।
11: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ। अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8GB डेटा, 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में। बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ। आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर। शरायतो जवाबित लागू हैं।
12: Pediasure से आइलीन को मिलता है complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth, ताकि ये ग्रो करे 50% faster.
1: You're listening to
13: The Rush Hour with ABD.
14: Welcome back to The Rush Hour. Guys, we have a lot of pop culture headlines for today that I really want to dive into. But before we dive into those, I just want to talk about one of the really pressing issues that Pakistan is facing. We're facing one of the most pressing yet underreported development challenges. Nearly half of all the children under 5 in Pakistan suffer from stunted growth. And Pakistan is currently facing a critical maternal and child nutrition emergency that carries a massive human but also financial toll on the country. It costs us estimated roughly $17 billion a year to our economy just for this issue. And 40.2% of children under 5, meaning about 10 million children, face irreversible physical and cognitive damage if it is left unaddressed past the age of 2. So I think understanding child stunting means looking far beyond just physical height. And you see someone, you think, oh, they're perfectly fine. Like, it goes far beyond that, as nutritional deprivation during a child's first 1,000 days causes permanent structural damage, including impaired brain development, weakened immune system, and a severe reduction in the future adult productivity. Now, the reason I'm talking about this is because Dawn has made started an initiative called ACT. And ACT Pakistan is Dawn Media's advocacy platform dedicated to driving awareness, dialogue, and action around Pakistan's most pressing social and developmental challenges. And I think now they're going to start talking about, malnutrition and, maternal health as well, maternal nutrition, which are all really important factors. So just wanted to bring that, just a bit of awareness, because I think we all have a lot of fun on the show, but sometimes we do have to look at the reality and just see that things aren't always sunshine and rainbows, and we just need to address them and try to work towards a better future. I'm going to send you to listen to Tornado by Ira Star, and when we come back, we have a lot of cool pop culture headlines.

0: to your song. Only on City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89, we're playing the song.
3: Brand new Honda City chahiye hai. बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहां जा रही हो?
5: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
4: बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
5: इन्वेस्ट पार्क?
6: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
5: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
7: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
8: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
9: टैक्स पे करना अब हुआ आसान, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
10: Mornings evolve and so do we.
11: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
12: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on The Breakfast Show.
10: The freshest music, the hottest gossip.
11: And the energy Gen Z lives on.
10: It's bold, it's current, it's your morning routine.
11: The Breakfast Show.
10: Only on City FM 89.
0: City FM 89.
13: Sounds different.
11: You're listening to

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
2: City FM 89, we're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City
3: FM
1: 89.
4: Trending today.
5: Queen of Pop Madonna has dropped her highly anticipated album titled Confessions 2. The project is a direct sequel to her 2005 hit album Confessions on a Dance Floor. The album is up on all platforms.
3: You're listening to City FM 89.
6: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। With Yellow by Jazz Cash.
7: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग No Frost No Worries
8: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
9: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
10: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
7: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT technology food expiry notification के साथ साथ आपको दे mobile app से complete control. No Frost, no worries.
3: You're listening to City FM 89.
2: We're playing your song.
1: You're listening to
11: The Rush Hour with ABD.
12: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABD, and we are going through pop culture from around the world. Then this weekend, Prime Video has set Wednesday, November 4th for the premiere of its Muhammad Ali limited series, The Greatest. They also released a first look trailer, and The Greatest is the first authorized scripted series about the life of the legend, which is a really big deal in my opinion. I think for the family of... you know, someone that great to approve of a script and of the making and the portrayal is a very big deal when you see it. Also, not only is it like, okay, yeah, they, you know, agree with everything that's being said, but I mean, they see the authenticity of the thing, which I really think is a big deal when you're watching a biopic of any sort. It's going to be talking about Muhammad Ali's life and career, and it's both in and out of the ring. You know, he's the greatest of all time as a boxer. I used to love boxing. He was always the greatest. Loved him. So cannot wait to watch this. It comes out November 4th, but if you haven't watched the trailer, make sure you go on YouTube and watch the trailer. It's a first look teaser, nothing too big, but it still, you know, gives you a glimpse of what it's going to be like. I'm going to send you to listen to Intoxicated by Hugh Shell, and when we come back, we are going to be discussing a retirement in the football world.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing the song.
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
6: अगर आप हैं इनड्राइव कार पाए या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
7: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
8: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: पूरा हफ्ता राब्ता बरकरार, जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा, 4,000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में। बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ, आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर। शरायतो जवाबित लागू है।
2: City FM 89, we're playing your song.
11: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: City FM 89, we're playing your song.
12: You're listening to
0: The Rush Hour with ABD.
13: Welcome back to The Rush Hour. We are discussing some traffic jam thoughts that you guys sent in last show. If you want to send in some of your own, please WhatsApp in on 03142-898989 and we will discuss and dissect your traffic jam thoughts, let you know if they're valid or if they were really just traffic jam thoughts. Okay, so the first one on the list we have is, why does 5 minutes feel like an eternity whenever I'm waiting for a microwave to finish, but it feels like absolutely nothing when I'm scrolling through social media in bed? I think this is common sense, but I also do like completely understand where you're coming from, because when you're watching a reel, you're having fun. You know, they say time flies by when you're having fun. But when it's like a microwave, it's like standing at a traffic light, right? Like you're just waiting, counting down the seconds. Okay, 30, 29, 28. Like it's just mundane. But I feel like when you're actually doing something, your brain is stimulated and you're having a good time, time does go by fast. So I think I understand the reason, but I also get where you're coming from. Like the sentiment of like just those 5 minutes can seem so long, but also seem so short depending on what you're doing. Absolutely understand that. Then we have, why do we refuse to take a single bite of food until we find the absolute perfect video or show to watch? I will literally let a steaming hot meal turn stone cold for 15 minutes just because I haven't picked the right 10-minute clip to accompany it. Brother, I am with you. Every morning, my breakfast comes right after the gym and I'm sitting there and, you know, I need to eat. I need to get to my work, all of that. But I cannot have my breakfast till I've found the right YouTube video to watch. And it sounds really easy to find a good YouTube video to watch, but you don't understand. I also can't pick a 30-minute YouTube video because I need to finish that YouTube video with my meal. So am I watching a reaction channel of someone doing that? Am I watching something more informative? Am I watching a Casey Neistat video? There's so many possibilities that it's just, you just end up spending at least 5 to 7 minutes. And like every minute you forego is also like more time gone from the amount of time you're allowed to watch. So it is a struggle. I absolutely resonate with you over there. Completely understandable. On that note, I'm going to send you to listen to Guarantee by Black Eyed Peas.

0: belongs to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: City FM 89.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैज कैश।
5: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
6: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: पीडियाश्योर से आइलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ, ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर।
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: दिस इज द साउंड ऑफ योर क्लाउड बिल एंड दिस इज द साउंड ऑफ इट गेटिंग रीइंबर्स्ड। Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
10: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स, रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर, क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।
11: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
1: You're listening to The

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
1: City FM 89,
3: your drive along companion.
1: You're listening to
4: Future Sounds.
3: Future Sounds.
5: Vibe with us, your music.
6: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: to your song. Only on City FM 89. It's 8:30 PM.
1: You're listening to City FM 89.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: Hold on, special delivery coming through.
4: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
5: We're now live on WhatsApp.
6: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
5: It's as easy as 03142-898989.
4: Save our number now and WhatsApp us.
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैस कैश।
3: City FM 89.
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
5: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
6: A new era begins.
7: 89.
8: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
8: Future Sounds.
9: Discover fire new tracks, fresh drops, and the artists you need on your playlist.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: City FM 89.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। विद येलो बाय जैस कैश।
5: City FM 89.
6: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
7: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
8: City FM 89.
1: You're listening to
9: Non-Stop Hits.
10: Future Songs.
11: Vibe with us, your music.
12: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: फॉलो अस एट City FM 89 ऑन TikTok।
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
5: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
6: Future Sounds.
7: Future Sounds.
8: New tunes, hot beats. Where your next favorite track finds you.

0: Song to your song.
1: Only on City FM 89.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: City FM 89.
4: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m.
4: City FM
0: 89.
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
6: Our TikTok will have you scrolling for days.
2: Follow us at City FM 89 on TikTok.
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैस कैश है ना।
0: City
8: FM
0: 89.
8: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
9: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
10: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.
11: No talk.
12: Just you
11: and the music.
12: Back to back
11: starts now.